0: बहुत
1: एक मुझे
0: नहीं,
1: लास्ट वाला
0: थैंक यू
1: गाना
0: जी,
1: याद
0: थैंक यू जी,
1: है।
0: बहुत
1: नहीं
0: बहुत
1: एक
0: शुक्रिया।
1: एक
0: हाँ
1: नहीं
0: जी
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं एक
0: नहीं
1: लाइन हो रही
0: अंदर
1: जी।
0: जी
1: मेन
0: वो
1: जेरी
0: सिकंदर
1: मेन
0: क्या
1: लाइन
0: था
1: और
0: जिसने
1: रहेगी
0: जी
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वो मेन लाइन रहेगी। ओके ना

लो जी, ऐसी सॉन्ग नंबर वन। सॉन्ग नंबर सेकंड, मत पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना

समझ सकता है जिसनों वाहिगुरु समझण योग कर देवे। ये बख्शिश उस परमात्मा दे अपने हाथ विच है, इसलिए बंदे खोज दिल हर रोज़ ना फिर परेशानी माहे।

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

0: गई रू तेरी चिबुक माही दिया दी वंडी गई। थैंक यू सो मच जी, जींदे वास्ते। हेलो,
1: थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जी, थैंक यू हर बार
0: ओके
1: दी तरह जी। जी
0: ओके
1: दोस्तों, ये सन जी
0: शुक्रिया।
1: मोहम्मद जी बख्शी जी जुड़े सन अपने नाल दुबई तो। थोड़ा जिहा नैट दी शायद प्रॉब्लम सी उन्हां दे वल्लों, आवाज थोड़ी जी हो रही सी डिस्टर्ब, पर फिर भी सुनन योग सी। लो फिर दोस्तों, इस दे नाल ही मैनूं तो आ गया सोमवार नूं मिलन दे वादे दे नाल होवेगी मुलाकात, ते जुड़दे आं फिर नवां वेला प्रोग्राम लैके सैटरडे संडे कल नूं जिहड़ा समझ जी संक्षमी होणगे हाजर महफल मित्रां दी लैके प्रोग्राम, ते प्रोग्रामां नूं सपोर्ट करन दे लई बहुत बहुत शुक्रिया सारे दोस्तां दा, धन्नवाद है अपने हरविंदर जौल भैन जी, जगदेव संधु जी, सिकंदर सिंह ओजला, महेश जी, भान सिंह गरेवाल जी, सुरेंद्र कौर माल जी, मान सिंह सैनी साहब, बलवीर सिंह सैनी साहब का शुक्रिया ते धन्नवाद है। लो फिर दोस्तों, हैव ए नाइस वीकेंड सब नू, ते रखड़ी वाला दिन भी मुबारक होवे, ते हसते वसदे रहो, खुशियां विच खेड़े लगे रहन, ते सोमवार नू मिलन दे वादे दे नाल मुलाकात होगी भारतीय समा 9:30 बजे, सत बद घट बोल के गुस्ताखी माफ, ते सोमवार नू मिलन दे वादे दे नाल होगी फिर तो मुलाकात। सत श्री अकाल दोस्तों।

सो पिता मिलेरा जानुबानी मेरी हरी सो मिलेरा किसी अब पास हूँ यूं

की हर मौज ठहर जाएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा, उड़ा सुराह कोई दास्तां सुनाएगी,

0: बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमा होगा, हथेलियों की ही ना याद कुछ दिलाएगी,
1: वाह जी,
0: हथेलियों की ही ना याद कुछ दिलाएगी, करोगे याद तो गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी,
1: क्या बात है,
0: निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी,
1: वाह।
0: गुजर

0: और
1: जी
0: बंदे सुने सुने काम करने हैं,
1: जी
0: बढ़िया बढ़िया काम करने हैं, ताकि क्या कर
1: बिल्कुल
0: दूसरे ना पड़ा हो सके, भले ही
1: बिल्कुल
0: भावना नु लेके चले, है
1: बहुत
0: ना,
1: खूबसूरत
0: किसी
1: जी
0: ने फायदा कर दो, कमर्शियली बेनिफिट बना दो किसी ने,
1: जी
0: कमर्शियली बेनिफिट।
1: बिल्कुल
0: हाँ, अगला जाएगा अपना कॉमर्स भी करता रहे, बिजनेस भी करे, तो
1: जी
0: ताडा गुणगान भी करता रहे, हाँ
1: बिल्कुल
0: जी।
1: है जी बिल्कुल
0: ते
1: है।
0: जो लो जी, दो को बोल दिए, तुसी कहो तो मैं
1: जरूर
0: जल्दी
1: जरूर
0: जल्दी
1: करो
0: काम
1: करो
0: करा
1: सांझे।
0: देना,
1: हाँ
0: हाँ
1: जी जरूर करो।
0: जी। बच्चे

वो दयालु है, करुणा निधान है, बख्शनहारा है। वो दयालु है, करुणा निधान, बख्शनहारा है। छोड़कर दंभ और घमंड, शरणागत उसका बन ऐ इंसान। करके पाप तू ऐ मूरख, करके पाप तू ऐ मूरख, क्यों इतराता फिरता है। करके पाप तू ऐ मूरख, क्यों इतराता फिरता है, क्यों मजलूम पर जुल्म।

0: दुआ करो अब के बरस खुशियों भरा हर एक पल आए। दुआ करो अब के बरस खुशियों भरा हर एक पल आए। धन्यवाद।
1: मैं शर्मा जीत हूँ। बाद एक मैं होर कुछ साखी करने का, एक साडे शायर ने फिरोजपुर तो कमल दास जी, वो भी अपनी एक रचना लेके हाजिर हो रहे ने। कमल दास फिरोजपुर जी, थोड़ा दुआबा रेडियो दे हफ्तावारी कवि दरबार दे विच निघा स्वागत है जी आया।
2: जिंदगी

सफर आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये कह

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी

एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये के

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी। जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी। एहसास

दुख सह लियो सिद्क ना हारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो ओ कहंदे ने दुख सह लियो सिद्क ना हारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं चारे पुत क्यों वारे जग विचारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं चारे पुत क्यों वारे जग